0: स्वीट महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना, 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9991।
0: स्वीट महल।
3: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन का विआह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
4: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
3: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
4: हां नाले मैं सारी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
3: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
4: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
3: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 रोड मालटन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
5: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगा, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50, मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज, 6101 Mayfield Road, Unit 3, Brampton. Call 905-794-4005.
6: अपने दंदा दा रखो ख्याल, SM Springdale Dental Center दे नाल।
7: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
8: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
6: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingosi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
9: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। जेकर तुहाडा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसे जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रहीयां हन। तुसी सोच रहे हो करिए तां हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਲਮ, ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ। ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ, 1800-567-HURT 4878 ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ 416-557-5010, 416-557-5010। ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ।
10: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साहब को अपना साथी बनाओ।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 ना

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

खुश दिली दा स्वैग बिलो रब दिया दा यार सारे दो यार दिल डूंगे चश्मा एक किते दिन रात नीत रखी बस साफ होगी मिस।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हेलो लोरी मित्रों बेंती है सारे अपनी अपनी थां ते खड़ जाओ भंगड़ा पाउण नूं तैयार हो जाओ प्रोग्राम शुरू होण लग्या है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: I'm a proud boy.
2: ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

वाइन तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: लोकां दी भरपूर मंग ते पेश करन जा रहे हैं जी कैरी ऑन जट्टा 2

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Fuentes en Production.
1: गगन?
2: हाँ सोनिया,
1: किथे है तू?
2: यार मैं एक्सरसाइज करना है।
1: मेनू बहुत वधिया सुपना आया।
2: यार हुण फेर सुपना?
1: किथे आ?
2: ओ मैं लेक ते आया।
1: मैं आ रही हूँ।
2: ओ तू इत्थे की करना?
1: उत्थे रुक।
2: हेलो सोनिया, ओए।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: ओए संदीप सिंह जी हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद दे प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए

0: महल वालियां दा ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 दी कैपेसिटी डिलीशियस फूड खुली डुली पार्किंग ब्यूटीफुल एम्बियंस मीटिंग व्या बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन भुल्यो ना स्वीट महल वालियां दा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो विवाह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना नहीं बसाया, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए।
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस समग्री नाल तैयार ताजियां मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड यूनिट 9 नियर हाईवे 427 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चाह पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेड ओदियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड मालचंद इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 905-671-4290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਡੈਕੋਰਸ 6477080079 6477080079।
14: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
15: ਸਸਤਾ

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
3: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
6: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
7: HK Movers,
6: local and long distance,
5: we also ship cars,
6: Kailer Transport and moving services.
7: For service with a smile, give us a call.
6: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
7: 416-524-6704.
6: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
6: HK Movers.
8: HK Movers.
9: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
10: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
9: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।

0: 7 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Supreme Deal Dental Center दे नाल।
3: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
4: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
2: SM Supreme Deal Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
5: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
6: हुण अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो जिथे भी होवो जदों भी चाहो।
7: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1320 AM वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते।
6: भावे तुसी घर होवो दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते अपनी मनपसंद आवाज नू अपने तो दूर ना होण दियो।
7: डाउनलोड करो CJMR 1320 दी ऐप या सुनो iHeartRadio ते।
6: इत्थो तक कि तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
7: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1320 647-910-1320
6: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919 641-741-1919 ते।
7: ते इन्ना ही नहीं, वख-वख IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब TV राही सानू लाइव देखण दा आनंद भी माणो।
6: तां फिर देर किस गल दी, अपनी मिट्टी दी खुशबू पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबीयत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1320 AM ना।
7: CJMR 1320 AM तुहाडी अपनी आवाज तुहाडा अपना पंजाब।
6: सुनदे रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।
5: की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स ते पूरे विश्व भर दे हिंदी पंजाबी उर्दू इंग्लिश गुजराती बंगाली मद्रासी तमिल पाकिस्तानी चैनल फिल्म सीरियल ड्रामे न्यूज बच्चा दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो भारी बचत ली आज ही कॉल करो 6475545859 647-554-5859। पील रेनोवेशन दा पैगाम, अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहते हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउन लई चेते रखो, वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिलकुल फ्री, एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउन लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 647-648-1847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।
2: जे बिजनेस का करना चाहते हो प्रचार, तो रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन लई आज ही कॉल लाओ सरकार 416

0: जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
1: इना कोड़ा सालना दा तजर्बा।
2: उन एड्रेस भी लिखा।
1: मैं लिख ला। वन गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
0: कॉल 6477069257, 6477069257।

0: दिसंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजे ही कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
2: रोज दे खाने तो हो गया बोर
3: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर
4: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुंचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबीको फोन नंबर 416-749-8333 यानी 416-749-8333 जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना
5: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट
6: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-6464
5: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट
7: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 इवनस रोड जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
8: वाह भाभी जी मुबारकां तुहाडा घर ते बहुत शानदार है कारपेट्स वुडन सब कमाल दे ने लगदा है काफी खर्चा कीता है
9: ए कमाल है जी जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा सामान वड्डे शोरूम ते आओ हार्डवुड कारपेट लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ कॉल करो नव बराड़ नु 905-605-8005 905-605-6605
10: जीटीए फ्लोरिंग कनाडा
5: जीटीए फ्लोरिंग कनाडा
11: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 9059288557
12: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ।

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो। Listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.